0: भी मानो ना माया भी बनो ना हमी को अतिथि करो जे जानो ना
1: बाबा माता भेगे।